बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो ऐ गुलना जानो क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया। बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो ऐ गुलनार।